0: जानकी
1: जय,
0: सत्य सनातन धर्म
1: की जय।
0: शुभ रात्रि।
2: स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

प्रदीप नारायण भगवान का जय। गुरु नानक जी महाराजा की जय। प्रदीप नारायण भगवान की जय।

दीप नारायण भगवान की जय। श्री माधव जी महाराज की जय। परम स्वामी महाश्वरान जी गुरुदेव की जय।

नानक की जय। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय। अलकपुरी जी महादेव, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान, दीप नारायण भगवान, सनातन धर्म की जय। ओम शांति शांति शांति।

श्री श्री देव पुरी समादेव धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन ओम शांति शांति

0: ओम सगुण ब्रह्म श्रीदीप परिपूर्ण नारायणाय नमः। ओम सोहम सगुण ब्रह्म श्रीदीप परिपूर्ण नारायणाय नमः। ओम श्री अलकपुरी जी महादेवाय की जय हो। अलकपुरी जी महादेव की, देवादिदेव देवपुरी सा महादेव की, हरि गुरुदेव भगवान दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। ओम शांति शांति शांति।
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम हंस स्वामी महाशयनंद पुरी गुरुदेव की जय।
0: Hey, where the air is going? Air is going from this side. True. Thank you. You can put it near Mahaprabhuji here, maybe. You're here.
2: Yeah.
0: Oh, Mahaprabhuji, that's for you, very good. Okay? Yeah.

ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तस्मस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलचलं सर्वधिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमाम्यं ओम शांति शांति शांति। दीप नारायण भगवान की जय। देवेश्वर महादेव की जय। माधव कृष्ण भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गुड इवनिंग ऑल डियर वंस, सैल्यूटेशन टू द कॉस्मिक लाइट, एडोरेशन टू द डिवाइन मास्टर्स एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। Nice to be again in the Vancouver, and I enjoy to go to the Stanley Park to take the lot of oxygen. Vancouver as well as Vienna have the same category of the good environment, good fresh air, and both Vancouver and Vienna have the same horoscope according to the astrology. Well, we are here to hear something about yoga. Yoga is like a

भगवान के लिए, गुरुओं के लिए और समाज के लिए ये चोला पहना है तो आपके बीच खड़ा हूँ, और साथ ही साथ में गुरुदेव जहाँ विराज रहे हैं वहाँ से भी आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा दूरभाष के माध्यम से कि उनका संवाद हो पाएगा या नहीं, नहीं ये नहीं कह सकता, लेकिन आशीर्वाद जरूर आपको जो है दूरभाष के या जो है मोबाइल के माध्यम से हो जाएँ, ये कोशिश करता हूँ। दो मिनट में आपसे पुनः बहुत बहुत पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद और हरिओम। दीप नारायण भगवान की, हिंदू धर्म सम्राट माधवानंदपुर जी महाराज की, विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम स्वामी महेश्वरानंदपुरी जी गुरुदेव की, सत्य सनातन धर्म की, हरिओम।

0: आने की अलकपुरी जी महादेव देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन धर ओम शांति शांति शांति
1: विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

0: The blood of life has been harvested. This is now a reservoir of life, not only for the ashram, but also for many villages in this thirsty region. Now was the right moment to reforest the hill with soils dug out from the lake. The hill will hold a tree. A tree will hold the hill. This is the symbiosis of sustainable development. As much as the rain was a blessing for the desert, it was also a symbol of blessing for the thirsty human soul, a blessing from an encounter with the king of spirituality, Holy Guruji. Sri Madhavanandaji, Swamiji's Guru, is both the rain cloud and the sun, an eternally fresh breeze of saintly presence.
1: इसलिए सत्संग करना चाहिए और संतों के दर्शन करके गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए। गुरुदेव का स्मरण सर्व पापों को धोके अंतकरण की शुद्धि होती है। अंतकरण शुद्ध करने के लिए प्रभु प्रार्थना और प्रभु का स्मरण और गुरुदेव की कृपा। लास्ट में कहा है गुरु कृपा ही केवलम तो शिष्य के परम मंगलम। जिसके ऊपर केवल गुरुदेव की कृपा होती है तो शिष्य के लोक परलोक में परम आनंद और मंगल हो जाता है। इसीलिए सतत गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए। ये भजन गाते हो ये वेदों का सार है। ये तुम्हारे हृदय में वेद का सार यानी ज्ञान प्रकट होता है। साक्षात परमात्मा महाप्रभु जी के मुखारविंद से जो वचन निकले हैं वो वेदों से भी अधिक है। वो भव सागर से सहज तार लेते हैं।
0: The following day there was the festival of the Dawn of Consciousness, the Light of Consciousness Festival. The day of Guru Purnima has dawned. Guru Purnima is the day of Gurudev's glory and the ancient verses of Guru Gita that are his hymn. All those who seek knowledge need a teacher, and one who seeks spiritual enlightenment finds a guru, a master, one who knows Atma and Paramatma, soul and God. India has kept the spiritual knowledge alive and attainable to all through direct interaction between guru and his disciple. This relationship always assumes the full commitment of the master and the surrender of a disciple.

0: So in our scriptures, in our teachings, in our way of life, there cannot be any other great person than Guru in the world for the disciple and for the all the followers of the yogic way of life.
1: Tamso ma jyotir gamaya. Lead us from the darkness to the light. The first, very first day when the first resonance was awoken in the endless universal consciousness, where the consciousness was dormant, the first was that resonance, the sound that was the Om, and through that sound the second element, the second tattva beside the akasha, the fire element, was created. And that first very moment is that is was the beginning of the Guru Purnima.
2: गुरु का मतलब है गुमन अंधकार रूमन है प्रकाश. अंधकार मेट के अपनी भूल है, अज्ञान है, वही अंधकार है. उसको मेट के प्रकाश देने वाले, सत्य ज्ञान देने वाले, अज्ञान को हटाने वाले, वही सतगुरु होते हैं. गुरुदेव को पहचानने वाले बहुत थोड़े भक्त होते हैं. गुरुदेव को पहचाने वो स्वयं गुरु रूप, परमात्मा रूप हो जाते हैं. और गुरुदेव की कृपा होती है, आत्मा का ज्ञान हो जाता है, लोक परलोक का ज्ञान हो जाता है. स्वयं भगवान ने मानव को पवित्र होने के लिए, मानव को सुखी होने के लिए ये गुरु पूनम का पर्व बनाया है.
3: Everybody wants to personally approach Holy Guruji and Swamiji, to see him and to be seen, to touch him and to be touched. This is a privilege of Guru Bhakta. Bhajans, the spiritual songs and odes to gurus, are sung all night on this night of an unforgettable full moon.

0: So, when you don't know what to do, stay few steps away. You will see immediately your mind will change. This is Mahasamadhi of Dev Puriji's Samadhi Sthal. His physical embodiment, that part of his mortal being or his body, Panch Tattva body, is sitting here. When you touch these stones, you have already touched his body. And the bhakta knows what it means to touch here.
1: तो सज्जनों, सत्संग करते रहना, महापुरुषों का श्रवण करते रहना, तो तुम्हारा जीवन सुखमय हो सकता है। गृहस्थ का सन्यासी का कोई कारण नहीं है। साधना करेगा, अमृत पिएगा, वो ही अमर हो जाएगा। उसका नाम अमृत है, अमर होना है, सब पापों से निवृत्त होना है, उस महापुरुषों का नाम ले। गुरु नानक कहते हैं, सतगुरु नाम जहाज चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा से सेवे तो गुरु पार उतरन हार। श्रद्धा करके गुरुदेव की सेवना करे तो गुरुदेव पार उतारे।
2: The desire to be present at a Kumbh Mela took us on a long trip towards the Indian state of Maharashtra. Every 12 years in the town of Nasik, a Kumbh Mela takes place. It is the great spiritual festival of purification and a quest for the nectar of immortality. The 20-hour journey passed in the best of spirits.

0: In this country, wherever Gurudev appears, he is accepted as a source of joy, a source of wisdom.
1: क्योंकि कहा है कि वंदो भारत वर्ष भूमि जहां सतगुरु दर्शन होए आत्म ज्ञान यही मिले और देश नहीं कोई। ऋषि मुनि सब संत जन और करे भारत की आस, भारत बिन मिलता नहीं आत्म ब्रह्म प्रकाश। श्री पूज्य भगवान दीप नारायण दीना ब्रह्म उपदेश, माधवानंद आनंद भया पाया भारत देश। तो वी नीड ऑल टू हेल्प अवर सेल्फ टू प्रोटेक्ट द कंट्री। We need to protect the Sanatan Dharma, and we should and we must protect all religions. No religion should be discriminated. No any culture should be discriminated. No any country should be discriminated. We have to respect them as they are.
0: Finally, the day of ceremonial bathing has

0: परमार्थ जिनका धर्म है, संकल्प अधर्म विनाश है। धर्म के अवतार की जय जय महेश्वरानंद की। धर्म के अवतार की जय जय महेश्वरानंद की।
1: बोलिए महेश्वरानंद महाराज की।
2: After the dynamic visit to Maharashtra, here we are again at the Jadan Ashram, in a place of peace, a peace needed for the depth of working with oneself, for the depth of yoga. Here, we come closer to the inner silence out of which all important answers arise. This ashram is a garden, an oasis of life.